आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

Mm-hmm.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

से तुम। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाती हूँ।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

भागीदार है नहीं तू।

चुनी।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का प्यारा सा ओल्ड इज गोल्ड का शो लेकर। सबसे पहले मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए। आते ही इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने, क्योंकि ये गाना मुझे अच्छा लग रहा है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ वाले हमेशा की तरह हमें सरफू भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और मुबारक हुसैन जी भाई मुबारक हो, जुड़ गए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में नाम शामिल है हमारे सर्वजीत सेठी जी का, वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी। और हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी दीपक कुमार गायकवाड़ जी। सर्वेश भगत जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संदीप सुतार जी, वेलकम करते हैं आपका भी संदीप सुतार जी। सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी सुनीता गोप जी। और राधा कृष्ण गोप जी आपका भी वेलकम है। और गजानन सुरकार जी आपका भी वेलकम है। और मेरी माँ जी आपको मेरा सादर प्रणाम है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी माँ जी। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं विष्णु चंद्र जी आपका भी। साथ ही साथ नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और जाकिर खान जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम वेलकम वेलकम। जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम करते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा, तो हमारे संदीप सुतार जी का जो गाना है आँखों।

वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और संदीप सुताली देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया मनसा जी मेरा गाना सुनवाने के लिए। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। और पिकुआ लिखते हैं कि बहुत बहुत आपका भी वेलकम है, गाना अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का मैं प्ले करने वाला हूँ, फिल्म यानी वो टक्कर से गाना सुनना चाहती हैं, ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो आपको दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए, निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी।
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। सुनीता गुप्त जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे एनपी गुरा लिखते हैं कि अति सुंदर गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। आत्माराम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, आत्माराम पाटिल जी। और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि दोनों ही सॉन्ग बहुत लाजवाब लगे हैं। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ दीपक कुमार गायकवाड़ जी का।
2: अमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सारे लिसनरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से बोल रहा हूँ, और आज की जो मेरी फिल्म है वो है जितेंद्र की हिम्मत वाला, और गाने के बोल हैं ताकि ताकि ओ ताकि ताकि ताकि रे जब से तू आंख में झाकी। तो ये गाना सुना दीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।

0: ताकी ओ ताकी ओ ताकी ताकी ताकी रे जब से तू आँखों में झांकी।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे सर, क्या नाम है, सतेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सतेंद्र सिंह जी। ओके, और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना चल रहा है, मजा आ रहा है। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी की पसंद सुपर हिट लगी है। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि सुपर हिट गाने की डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और पिकू राय जी लिखते हैं कि दीपक जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, ताकि ताकि। और आत्मराज जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी और दीपक कुमार गायकवाड़ जी, आप दोनों की डिमांड बहुत ही लाजवाब। अगला जो डिमांड है हमारे गजानन सरकार जी के ग्रुप की है, इसमें शामिल हो रहे हैं हमारे मिसाल अंगद जी भी। ये लोग सुनना चाहते हैं गाना जिसका नाम है यानी कि सुन साहिबा सुन। ओके, तो एंजॉय कीजिए सुन साहिबा सुन इस गाने को।

0: बिल्कुल सुन सब सुन प्योर प्यार की धुन। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हुए हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: हमारे स्टार आज अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, फीडबैक देने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और यहाँ पे हम ताहिर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि अमन जी आदाब, अंदाजे गुफ्तगु, आपका लफ्जों का सुरीला तरन्नुम और जहीन लहजा हर सुनने वाले के रूप को तरोताजा कर देता है। आपका ये दिलकश अंदाज मोहब्बत लवरेज इस्तकबाल शो में को बेमिसाल और यादगार बनाया था। थैंक यू सो मच एम ताहिर साहब आपके इतने प्यारे प्यारे शब्दों के लिए और लफ्जों के लिए। पिकू राज लिखते हैं कि सुन सबा सुन वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए गजानंद जी के पूरे ग्रुप को। साथ ही साथ सोनू गौतम जी लिखते हैं कि गुरु फरमाइश बहुत अच्छी लगी है, सुन सबा सुन मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि हमें सभी ग्रुप की डिमांड लाजवाब लगी है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, गजानंद सुलकर जी का पूरा भाई अपने गाने में शामिल किए हैं और मिसाल अंगद जी भी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे आत्माराम जी लिखते हैं कि गजानन भाऊ, मिसाल अंगद जी और सभी दोस्तों की डिमांड बहुत अच्छी लगी है, फिल्म राम तेरी गंगा मैली से सुपरहिट सॉन्ग लगा लता मंगेशकर की आवाज में। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि मस्त गाना लग रहा है, मजा आ गया सुन के। और साथ ही साथ हमारे गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये क्या कहते हैं भाई, इनकी भी सुन लेते हैं।
3: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूँ। और अमन सर जी, आज के कार्यक्रम जो ओल्ड इज गोल्ड, लता मंगेशकर के बर्थडे है आज जी। तो अमन सर जी, आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी का भी गाना यही था, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उनके गाने में मुझे याद किया। और अमन सर जी, आज दोपहर का जो कार्यक्रम 2 बजे का आरजे वंशिका जी ने पेश किया, मैंने ये कार्यक्रम आज पूरा सुना, तो वंशिका जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा अमन सर जी। और अभी जब जितने भी गाने आपने सुनवाए, ये भी गाने मुझे सबसे बेहतरीन लगे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी इस फीडबैक के लिए। निशांत रे बोल लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है, थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए इस गाने को। और शाहनवाज खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं कि राम तेरी गंगा मैली का जो गाना है वो सदाबहार नगमा है, मुझे बहुत लाजवाब लगा है और धन्यवाद देते हैं। इतना नहीं, आपका रिक्वेस्ट मुझे नहीं मिला है अभी तक। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि गजानंद जी की वो जो पसंद थी एकदम ही शानदार थी, धन्यवाद देते हैं उनको इस पसंद के लिए। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि 1985 के चोटी पर बजने वाला गीत सुनने में मजा आ गया सर, आदरणीय मित्र गजानंद सुलकार जी और उनके दोस्तों को बेहतरीन पसंद सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं सुनाऊंगा आपको काजल झक्का जी की। क्या सुनाना चाहती हैं, जरा सुनते हैं।
4: नमस्ते, गुड इवनिंग, मैं काजल सीतामढ़ी से।
0: अरे क्या बना रही हैं?
4: एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग में भेज दे गई हूँ, ये सॉन्ग मैं सुना दूंगी मिठू मियाँ जी को, आपको, जितने दीवाने दीवानियाँ सुन रही हैं सभी को सुना दूंगी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट हिसाब जो आपको दीवाना बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। सबसे पहले तो सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आर जे अम्मा सर जी काजल हाजी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे अशोक जसपूर जी लिखते हैं, धन्यवाद काजल झकास जी गीत में शामिल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और काजल अंजी लिखते हैं, काजल झकास जी गाना मुझे धर्मवीर का अल्लाह जवाब लगा है, उनको बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। निशान साहब लिखते हैं, वेरी नाइस सॉन्ग है। और हमारे यानी कि प्रमुख भैया जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार के वो प्यार किया, जो नफरत की सो नफरत की, और ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनाने में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपको। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1977 के पैदान नंबर 10 पर बजा था ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मधुर आवाज़।

में आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत बेहरा जी के संगीत जी। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड गाना जबरदस्त लगा है, धन्यवाद इस गाने के लिए भी। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक गाने की डिमांड आ रही है, मजा आ रहा है सुन के, वह मजा आ गया। और प्रकाश जी लिखते हैं कि बहुत ही गुड सॉन्ग है। साथ ही साथ शाहनवाज जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद धर्मवीर का। ओके, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मैं यानी कि प्रियंका जी का, और प्रियंका जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम एक रेडियो हॉट हिसाब जो आपको दीवाना बना दे और फीडबैक आया अच्छा सत्येंद्र जी लिखते हैं कि अच्छा वहाँ वहाँ पे भेज दिया या मैं कोशिश करता हूँ कोई बात नहीं ये फीडबैक
1: और जय अमन सर जी प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर
0: वेलकम जी आपका भी जाना चाहिए कि ये प्रियंका जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगे बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं अशोक कुमार लिखते हैं कि ये यानी कारमा का शानदार गीत मजा आगे सुन के और दीपक कुमार गायकवाड़
2: अमन जी मेरी दुकान पर दो बालिकाएं आ चुकी है और आपके जो प्रोग्राम रोज सुनती जब भी आती है और ये कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए
3: अमन भैया आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है गाने सुनने में मैं लाव्य केवट टू सुनी मालवा से
4: मैं पल्लवी केवट सुनी मालवा बनापुरा से
0: जी बहुत बहुत आप दोनों का वेलकम है सीता जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गई जी बहुत बहुत वेलकम है सीता सिन्हा जी और शाहनवाज जी लिखते हैं ये प्रियंका जी का डिमांड मुझे अच्छी लगी अगला जो डिमांड है वो शाहनवाज जी का ही है और सभी को डेडिकेट करते हैं जैसे कि हमेशा सभी को डेडिकेट करते हैं सभी को डेडिकेट कर रहे हैं एंजॉय कीजिए

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और ये यानी अशोक कुमार लिखते हैं कि फिल्म सेहरा का सुपरहिट गिनते सुनने में मिला, मजा गया लता और रफी की आवाज में। धन्यवाद देते हैं शाहनवाज खान जी को। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि अमन सा जी नमस्ते, मैं भी जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और एन ताहिर जी लिखते हैं कि 1960 से 89 का ये दौर सिर्फ गानों का नहीं बल्कि हमारी रूह से जुड़ी हसीन यादों के खूबसूरत वो कारवा है। आपकी यह नया पेशकश आवाज का जादू और यह लाजवाब अंदाजे प्यार सीधा दिल में उतर जा रहा है। इस सुहानी महफिल और आपकी उमदा मेहरबानी के नाम मेरा सलाम है, थैंक यू सो मच। और गजानंद लिखते हैं आदरणीय शाहनवाज जी की पसंद, मुझे बहुत पसंद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना बेहतरीन नगमा सुनाने के लिए और आज के विनर बनने के लिए भी बधाई। ये फीडबैक कहते हैं, क्या कहते हैं
1: अमन जी? एक छोटी सी बालिका और आई है और ये उसका नाम है दीक्षा और ये आपसे कुछ पोयम वोयम साया सुनाएगी छोटी सी। अच्छा, सुना बेटा।
2: सास समंदर पार से, गुड़िया के बाजार से, पापा एक सुंदर से गुड़िया लाना, पापा चाय मत लाना, पापा जल्दी जाना, मेरा नाम है दीक्षा भाटिया।
0: हाँ। दीक्षा जी इसी बात पगला जो मैं डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी मतलब इन प्रमुख जी का है, उसके बाद आता हूँ तो फीडबैक शामिल करता हूँ। और ये सुनना चाहते हैं साजन मेरा उस पार है बिल्कुल और मिलने को दिल बेकरार है, तो भाई फिलहाल इंजॉय करवाते हैं आपको ये गाना साजन मेरा उस पार है, फिर आते हैं तो आप सबके लिए फीडबैक में शामिल करूँगा। ओके तो साजन मेरा उस पार है।

मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं, और सबसे पहले तो यहाँ पे शनवाज जी लेते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मैं शनवाज खान हैदराबाद से, ओके। और सत्येंद्र जी लेते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और नंदनी मैम मेरी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना था, यानी कि सजना तुम तो प्यार हो। जी बिल्कुल, थैंक यू।

0: और यहाँ पे जुड़ चुकी है नाम है मीना कुमारी जी, बहुत बहुत वेलकम है मीना कुमारी जी। राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राजीव तिवारी जी आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त हमेशा हनुमान जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन प्रमुख जी की भी पसंद बहुत अच्छी लगी, उनकी भी धन्यवाद देते हैं। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1989 के पैदान नंबर 2 पे बजने वाला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, इन दीवार के बोल और संगीत आनंद मिलिन जी का धाम, और मीनाक्षी शास्त्री पर सुनवाई हुआ ये गीत शानदार लगा, धन्यवाद देते हैं। और निशांत लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं भाई यानी प्रमुख जी को। और ये फिर सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी शाहनवाज, जय अमन सर जी प्रमुख जी और शाहनवाज खान जी अपने गाने में दोनों भाई शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि साजन मेरा उस पार है, बहुत ही लाजवाब गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये फिर मैं सुनाता हूँ,
2: थैंक यू गाना बजा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फीडबैक देने के लिए। और सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज गए हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। आप पूछेगी क्या बना रही हैं, तो मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, मैं चाय बना रही थी और वो भी अदरक रख के, क्योंकि बारिश में भीग जाने से ना सर्दी खांसी कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए चाय बना रही थी और कुछ नहीं। अभी मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ, तो थैंक यू सभी दोस्तों को भी और आपको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी से।
0: अब तो मुझे भी चाय पीने का मन करने लगा भाई, वो भी अदरक वाली का। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जोड़ी मान में प्ले करने वाला हूँ एम ताहिर जी का सुनवाना, ये चाहते हैं जब आती होगी याद तेरी फिल्म इन फांसी का वो लाजवाब गाना, और सुनना चाहते हैं और सुनवाना चाहते हैं डेडिकेटेड अमन जी आपको, थैंक यू सो मच आपकी सुंदरता की मोजी को, थैंक यू सो मच उनके लिए। और खासकर मैजिकल गर्ल यानी कायनात जी को डेडिकेट है, और सुनील गौतम जी को और सुनील कुमार जी को, और साथ ही साथ यानी कि अच्छा और यानी प्रिंस पासवान जी को, और जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं सभी को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सुनवा दें आपकी पसंद का वो गाना भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
3: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: बिल्कुल जब आती होगी याद मेरी तो तेरा दिल भी धड़कता होगा, तड़पता होगा। और मनीषा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मीना इब्राहिम जी कहाँ हैं, अभी तक आई नहीं। और शहनवाज जी ने अपना अगला गाना भेज दिया है मुझे, मैं कोशिश करूँगा जल्दी प्ले करने की। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि और भी बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। यहाँ पे काजल झका जी लिखने गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: अरजे अमा सर जी, एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे रोहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रोहन, यानी कि सोम कुमार जी। गजानंद जी लिखते हैं कि जब आती होगी याद तेरी, फांसी का गाना बहुत ही लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और विष्णु जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लाजवाब गाना है। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि याद तो वाकई में आती है, और क्या करें हम परदेश में हैं ना, लेकिन गाना सच में अच्छा लगा, दिल को छू गया है। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि ये साजन मेरा उस पार है वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, सभी लाजवाब लाजवाब गाने प्ले हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ओके। और यहाँ अशोक कुमार लिखते हैं कि फांसी का फांसी फिल्म की शानदार गीत 1979 में पैदान नंबर 27 पर बया था, मोहम्मद रफ़ी के साथ सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में, ये गुलशन बावरा के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था। जी थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि जब आती होगी याद तेरी वाला गाना मुझे बहुत लाजवाब लगा। एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले किया, आपको तहे दिल से शुक्रिया। और जिन दोस्तों को मेरा गाना प्ले पसंद आया उनको भी शुक्रिया। अगला जो डिमांड इसी बात पे मैं सुनाऊंगा, यानी कायनात जी का, वो सुनना चाहती हैं गाता रहे मेरा दिल, और स्पेशली डेडिकेट है, लिखती हैं कि मेरे सरकार एम ताहिर जी को, और सभी सुनने वालों को डेडिकेट है। तो भाई अब हार्ट बीट से अब सरकार हो चुके हैं, फिलहाल मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, गाता रहे मेरा दिल, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और गजानंद जी लिखते हैं कि गाता रहे मेरा दिल, ये गाइड फिल्म गाना मुझे अच्छा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा जी आपका। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि गाता रहे मेरा दिल तो ही मेरी मंजिल, अमन जी अभी तो मंजिल है जो वो सरकार पे ही आकर अटकी हुई है, आगे देखते हैं यानी कहाँ तक जाती। जी जी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे शनवा जी लिखते हैं कि जब आती होगी याद मेरी, बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं भाई। और उसके बाद से गाता रहे मेरा दिल, ये भी गाना लाजवाब, वर्ल्ड इज गोल्ड, सुपर फरमाइश लगा है। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि अति सुंदर गाना है, ओके। और रोहन जी लिखते हैं कि जान भाई आप मुझे वहाँ पे भेजिए ना, यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से मैं जरूर गाना प्ले करने की कोशिश करूँगा। राजीव तिवारी जी लिखते हैं गाता रहे मेरा दिल मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और प्रियंका

बोलिए आगे, बस इतना ही मुझे लगा कुछ बोलिएगा भी, कुछ बोली नहीं बिल्कुल आप, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम ताहिर जी लिखते हैं कि लेकिन कायनात जी की यह पसंद तो दिल को छू गई है, गाता रहे मेरा दिल सुनकर शाम वाकई बेहद हसीन हो गई। अमन जी इस नगमे को हवाओं में घोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो जैसे नायाब खुद हैं ऐसी ही उनकी पसंद भी है। ओ थैंक यू सो मच इतने प्यारे लफ्ज़ों के लिए। और विष्णु जी लिखते हैं कि बीते ना ये रातें वाला गाना मुझे अच्छा लगा। ओके जी, बस अच्छा लगा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे यहाँ पे अशोक कुमार जी लिखते हैं कि गाइड फिल्म के शानदार गीत 1966 में यानी 1966 में ये पैदान नंबर 2 पे बया था, और किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और SD बर्मन जी का संगीत मजा के सुनने को मिला। और अप्रीति रायदास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत राय बोल लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही शानदार गीत है। ओके जी, और अनिल मेहता जी लेते हैं कि वाह बहुत ही लाजवाब गीत है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ सत्येंद्र सिंह जी का, ये सुनना चाहते हैं झुमका गिरा रे कहाँ तो बरेली के बाजार में।

0: हाँ तो बरेली के बाजार में तो झुमका गिर चुका है और वहाँ पे बहुत बड़ा झुमका का यानी बन चुका है, फिलहाल कोई भी जाकर देख सकता है वहाँ पे। और फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास उनसे।
1: आरजे अमन सर जी, सतेंद्र जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और ये भी बता दूं कि उसका नाम है झुमका चौक। जी बिल्कुल। और यहाँ पे सतेंद्र जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और शाहनवाज जी लिखते हैं एकदम सुपरहिट पसंद के लिए मजा।

0: और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अमन जी, बरेली सिटी में एक चौराहा है जो झुमका चौराहा, हाँ वही तो मैंने अभी बताया है, वहाँ पे बहुत बड़ा झुमका एनी टाइम। जी जी बिल्कुल, मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा था। और गजानन जी लिखते हैं कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बेहद लाजवाब की सुनकर ये तो मजा ही आ गया है। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि सुपर ओल्ड इज गोल्ड गाना चल रहा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: आर्जमन सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आज ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम शो में आज एक गाने की डिमांड है।
0: कौन सा गाना है जरा मुझे लिख कर भेजेंगे प्लीज, क्योंकि आपने ऑडियो भेजा है, लेकिन कौन सा गाना है उसके बारे में आप वहाँ सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिएगा, तभी मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड गाने सुनकर मजा आ गया है, धन्यवाद देते हैं। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड चल रहा है। अशोक कुमार लिखते हैं कि फिल्म मेरा साया का शानदार गीत 1966 के पायदान नंबर 4 पे बजा था आशा भोसले की आवाज में, और राजा मेहदी अली खान गीतकार थे, संगीत मदन मोहन जी का था, सुनने को मिला, मजा आ गया है। ओके, और इसी बात पर यानी मीना कुमारी जी लिखते हैं कि वाह क्या मस्त मस्त गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुनकर। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वह हमारे रवि मोहाड़े जी का है, सुनना चाहते हैं इनको भाई कांटा लगा। ओहो, शायद ऐसे ही कुछ गाना है, वो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल आते हैं, पता नहीं गाना तो डाउनलोड किया था।
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: बिल्कुल बजाते रहो दिल से और सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। यस, गाना डाउनलोड हुआ है, लेकिन मैं ढूंढ रहा था यानी कि कांटा लगा से, जबकि था गीत के बोलता इन बंगले के पीछे से, कैसे मिलेगा भाई।

0: बिल्कुल बंगले के पीछे फिलहाल बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं इनके सुनते पहले?
1: हरजय अमन सर जी, रवि मुहाले जी अपने गाने में शामिल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे अशोक कुमार लिखते हैं कि ये पसंद रवि मुहाले जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। शनवाज लेते हैं क्या बात है रवि मुहाले जी, वेरी रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिला, मजा आ गया। और मीना कुमारी लिखते हैं कि ये काटा लगा वाला गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं बहुत मस्त गाना है। और गजानंद जी लिखते हैं कि रवि मुहाले जी की पसंद काटा लगा, लता मंगेशकर की आवाज में समाधि का गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: आदरणीय लता मंगेशकर की आज बर्थडे है और उनकी बर्थडे पर आज ये गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। बंगले के पीछे लता मंगेशकर की सुपर आवाज़ में आप बहुत अच्छा गाना सुनाया, धन्यवाद कहेंगे आर जे अमन सर को। और साथ साथ ये गाना जिसने भी प्ले करवाया अच्छी फरमाइश की है, थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और मनीषा जी लिखते हैं कि ओके फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाले

0: हमारे राधा कृष्ण गोप जी का। भाई राधा कृष्ण गोप जी एंजॉय कीजिए।
1: हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं है, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना में कायदे सागर जी लिखते गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है और यहाँ पे सर्वेश भगत जी
1: आरजे अमन सर जी रादास कृष्णा गोप जी अपने गाने में शामिल थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: अब वेलकम जी आपका भी और रवि मार जी क्या कहते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए क्योंकि आज लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है इसलिए मुझे लता मंगेशकर जी का ही गाना देना पड़ा। मजा आ गया गाना सुन के और सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गाने को पसंद करने के लिए। मैं रवि मोहाले बैतूल मध्य प्रदेश से।
0: अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे जाकिर खान जी का है। सुनना चाहते हैं महबूबा बना लो मुझे दूल्हा। लेकिन गाना तो नहीं है।

0: जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू
1: जी आपका भी। और यहाँ पे मनीषा जी का सुपर सॉन्ग है जी, और हमें शनवा जी देते ये साधु शैतान का गाना लाजवाब डिमांड करते, थैंक यू सो मच जाकिर खान जी आपका। और अनिल मेहता जी देते हैं कि आज तो ये मतलब पुराने गाने सुन सुन के मजा ही आ गया है। सोनू गौतम जी देते महबूबा महबूबा नालो मुझे दूल्हा अमन जी, ये गाना मैंने पहली बार सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, धमाकेदार गाना सुनकर मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं जाकिर जी को। गजानंद जी देते जाकिर जी के पसंद महबूबा महबूबा वाला गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद। और काजल झका जी देते गाना बहुत ही प्यारा है। और सत्येंद्र जी देते महबूबा ओ महबूबा वाला गाना मुझे मजा आ गया सुन के। अशोक कुमार लिखते हैं कि साधु और शैतान का गीत शानदार लगा है, मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुनकर मजा आ गया। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने जा रहा हूँ ये सोनू गौतम जी का। सोनू गौतम जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को। और क्या बता दूँ इनमें इन्होंने किन किन को गाना डेडिकेट किया है, जरा ये भी देखना पड़ेगा मुझे। और ये लिखते हैं कि अमन जी आपको, आरजे वंशिका जी को, एमडी ताहिर जी को, सुनील कुमार जी को जो बांका बिहार वाले हैं, और प्रिंस पासवान जी को, सतीश शर्मा जी को, राहुल पासी जी को, और इन प्रीति रायदास जी को, प्रियंका जी को, ज्योति खटवड़ जी को, पूजा भास्कर जी को, और कुंता बिन जी को, जितने भी दोस्त हैं सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना रहे, बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
1: अमन जी, जब मैं रेडियो हॉटस्टार की ये फरमाइश जो पूरी होती है हमारी उसके बारे में पब्लिक को बताता हूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि हम दूसरे रेडियो चैनल पर फरमाइशी गीत हमारे भेजते हैं, कभी पूरे ही नहीं हुए, आज तक कभी पूरे नहीं हुए, आपके कैसे पूरे हो जाते हैं। मैंने कहा कि वो पुराना ज़माना गया, अब है रेडियो हॉटस्टार का ज़माना, आज की फरमाइश आज ही पूरी होगी। तो तुरंत डाउनलोड करें रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। मैं दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका फीडबैक के लिए। और ये फीडबैक
2: आरजे अमन सर जी, सोनू गौतम जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी के पसंद लाजवाब लगी है, बेहतरीन धन्यवाद देते हैं इस गीत के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे काजल झका जी देते हैं, गाना बहुत ही प्यारा है। और ये फीडबैक सुनते हैं।
3: शुक्रिया अमन सर जी मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी तहे दिल से धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और अभी जो सोनू गौतम जी का सॉन्ग प्ले हो रहा है चालबाज मूवी से, वह भी शानदार सुपर। मैं जाकिर खान, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1989 में, अच्छा यानी कि 1990 में, ऐसे तो ये मतलब यानी कि 1989 की फिल्म है लेकिन 1990 में ये 19 नंबर पे बजा था अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और श्रीदेवी पर फिल्म।

आप सिर्फ गाना गा रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। और यहाँ पे इन विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा, थैंक यू सो मच। और प्रीति राधा जी लिखते हैं कि भाई सोनू गौतम जी की को बहुत बहुत धन्यवाद अपने गाने में मुझे डेडिकेट करने के लिए। और मनीषा जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीत है, मज़ा आ गया सुनकर। और राजीव त्यौहार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मज़ा आ गया है। और हमारे अनिल मेहता जी लिखते हैं वह क्या बात है, सभी गाने से बढ़कर एक चल रहे हैं, रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये हमारे शाहिद अंसारी जी का है। शाहिद अंसारी जी सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए, आई लव यू।

वेलकम वेलकम रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना वाले बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हैं। काजल झका जी ने गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। शायद जी को संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वाह बहुत लाजवाब गीत के लिए, थैंक यू सो मच। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि सभी भाइयों को थैंक यू सो मच। ओके कोई बात नहीं है। और यहाँ पे लिखते हैं अशोक कुमार जी के, शाहिद जी की पसंद लाजवाब है, अनसुना गीत मैंने इसी पहली बार सुना है, उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए इसी बात पर शाहिद अंसारी जी को भी सॉन्ग विनर बनाते हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि शाहिद जी की पसंद लाजवाब लगी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा, बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और सोनू जी लिखते हैं कि अमन भाई बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है, एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिल रहे हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में

इनकी आवाज तो नहीं आ रही लेकिन इनका गाना है अरे जाने कैसा कब हुआ, तो इंजॉय कीजिए। और इनका नाम है रोहन एन सुकुमार, रोहन एन सोम कुमार।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक है। राजीव जी लिखते हैं कि ये भी सुपर हिट गाना है, जाने कब कहां कैसे वाला। सरोज भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अहमद सर जी, शाहिद अंसार जी और रोहन जी दोनों भाई मिली अपने अपने गाने में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और शाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए और गाने पसंद करने के लिए। अशोक कुमार लिखते हैं कि शक्ति का गाना सुपर हिट लगा, बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि जारे जाने कैसे कब कहां, ये वाला गाना तो सच में मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि अमन सर जी सभी दोस्तों की पसंद एक से बढ़कर एक चल रही है। और शानवाज लिखते हैं कि शक्ति का लाजवाब गाना। अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि प्रमोद जी का है, और प्रमोद जी सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

0: और यहाँ पे यानी के राजीव जी लिखते हैं कि भाई यानी प्रमोद जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। रंजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है ये, मजा आ रहा है सुन के। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आपकी ये मधोरी आंखों को कमल कहते हैं, भाई प्रमोद जी आपकी पसंद एकदम लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं आपको। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी देते हैं कि भोजपुरी तड़का आज नहीं, आज भोजपुरी अगर यानी ओल्ड गाना है तो भेजेंगे कोई, तो मैं जरूर प्ले कर दूंगा। और ये फिर
1: अजय अमन सर जी, प्रमोद जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और अगला जो डिमांड है हमारे वो रंजीत जी का है, रंजीत जी क्या कहते हैं? क्या
2: का नाम है लव स्टोरी और गाने का बोल है, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया आजा। एक ये सबसे पहले आपको डेडिकेट है, और आपकी सुंदरता की मूरत को डेडिकेट है, और वंशिका जी को भी डेडिकेट है, और जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले साथी हैं सभी को डेडिकेट है। मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से।

0: वेलकम है रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और यहाँ पे एम ताहिर जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी का इंतखाब भी यानी किस कदर बाकमाल है, ना जाने कहाँ से आई है, हर बोल में जैसे एक नई ताजगी मुस्कुराहट है। इस हंसी नगमे की सांझी डेडिकेशन का हिस्सा बनाना और खास खास मतलब है और भी बा असर बना भाई यानी बना गया है भाई यानी सोनू गौतम जी को हमेशा की तरह लाजवाब लगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए भी और प्रमोद जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए और मनीषा जी लिखते हैं कि जबरदस्त गाना चल रहा है और पैदल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है ओके और सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि देखो मैंने देखा है एक सपना, बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं और रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अमीना कुमार जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा प्यारा चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। सर्वजीत जी क्या कहते हैं?
1: अरजय अमन सर जी रंजीत कुमार जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी और रवि मार जी लिखते हैं सुपर भेजी लाजवाब पसंद चल रही है, धन्यवाद देते हैं। शर्मा जी लिखते हैं कि लव स्टोरी गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी हम भी जुड़ गए, वेलकम करते हैं आपका भी। गजानंद जी लिखते हैं कि देखो मैंने देखा एक सपना वाला गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। मनीषा जी लिखते हैं कि बेहतरीन गाना है, इसी बात पर मनीषा जी कहीं मैं गाना प्ले गया था, एंजॉय कीजिए मनीषा जी अपने गाने को।

0: और यहाँ पे रवि मोहन जी क्या कह रहे हैं, कुछ कहा नहीं इन्होंने, कुछ मैसेज नहीं भेजा शायद। ओके, और अशोक कुमार लिखते हैं कि ये लवली सुपर हिट पसंद के लिए अच्छा लव स्टोरी का गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और विष्णु जी लिखते हैं कि सुपर वर्ल्ड इज गोल्ड पसंद। और सर्वेज
1: अरजय अमन सर जी, मनीषा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे मनीषा जी के लिए वेरी वेरी थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये तस्वीर तेरे दिल में, ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम लाजवाब, सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, चलूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। अमन सर बेहद सुपर, बहुत
0: ही जी, मुझे पता है बेहद सुपर गाना। काजल झका जी लिखते हैं गाना सच में बहुत ही प्यारा है। बाबूलाल जी लिखते हैं मनीषा जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। शर्मा जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर हर टचिंग सॉन्ग। जी बिल्कुल, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है,
4: बहुत ही लाजवाब गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, सुपर गाने की चॉइस, धन्यवाद देंगे आपको भी और फरमाइश करने वाले को भी।
0: ओके जी, और ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे शानवाज जी जो आज के विनर बने थे उनकी पसंद का सुनवाते हैं।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करूंगा राहुल पासी जी का ही मैं प्ले करने वाला हूँ। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और मनीषा जी लिखते हैं व्हाट्सएप पर, हाँ भेज दिया जी, आपका लिंक मुझे मिल चुका है और आप मतलब यानी कि लिंक इस जगह भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यानी कि कहीं भी लिंक भेजिएगा मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं चूंकि इन व्हाट्सएप पर ध्यान नहीं देता हूँ ना, इसलिए आप लोग मुझे जो भी भेजना है यही भेजा कीजिए ऐप से ही। शाहनवाज जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, आपने मेरा वो डिमांड को ऑन एयर कर दिया है। सभी दोस्तों का शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मैं शाहनवाज खान हैदराबाद से, और काजल झका जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, और सर्वेश भगत जी,
1: अजय अमन सर जी, राहुल पासी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: ओके जी, और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि राहुल जी की पसंद मुझे पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको इस डिमांड के लिए। और दत्ता जी लिखते हैं कि नमस्कार अमनसर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्ता करम जी आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस इस गाने की भाई, राहुल पासी जी का, और साथ ही साथ आत्माराम जी क्या कहते हैं।
2: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, अभी अभी कर्मा मूवी का गीत हमने सुना, बहुत ही अच्छा लगा, शुक्रिया फरमाइश करता हूँ को। मैं आत्माराम पटेल लिया बुलडाना महाराष्ट्र से, थैंक यू।
0: ओके जी, और यहाँ पे नंदलाल जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते इस गाने को पसंद करने के लिए। रश्मि नामदेव जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, लिखते हैं बहुत मस्त गाना है। और राहुल पाटिल जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी नाम है यहाँ पे MERA, यानी मेरा लिखा हुआ है, अब यानी फुल नेम है ये, पता नहीं क्या नाम है भाई, अपना मुझे नाम बताइए, लेकिन मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और रश्मि नाम जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा ये गाना मुझे लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि सच में गाना बहुत ही प्यारा है। और अमीना कुमार लिखते हैं कि अच्छा ये मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा ये आपका गाना था, ओ हो मीना कुमारी जी। और जुड़ चुके हैं, क्या नाम है इनका, मनहर यानी कि काजल कंगन भाई, कौन नाम है भाई मनहर कागल काजल कंजल, जो भी है भाई प्लीज अपना सही से नाम मुझे बता दीजिए, मैं आपका नाम ताकि मैं सही से ले सकूं। फिलहाल ये फीडबैक

0: अमन सर खानदान मूवी का बेहद सुपर सॉन्ग है ये।
1: बिल्कुल ये तो सुपर सॉन्ग तो है। थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे शनवाज जी लिखते हैं कि ये वाला गाना बहुत लाजवाब लगा है बेहतरीन फरमाइश के लिए, और खानदान का भी गाना बहुत ही प्यारा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की डिमांड करने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहती है।

0: कि तुम मेरे क्या हो, ये पसंदीदा सॉन्ग है हमारा। थैंक यू।
1: ओके, थोड़ा सा ही आपने बोला है। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि तू ही मेरे मंदिर वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: जिधर देखती हूँ उधर

0: थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए, दिल से धन्यवाद।
1: ओके जी, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि तुम्हें मेरी मंदी वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और अच्छा लिखते हैं मनहर, यानी मनहर मत,
0: थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए, दिल से धन्यवाद।
1: ओके जी, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि तुम्हें मेरी मंदी वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और अच्छा लिखते हैं मनहर, यानी मनहर मतलब कुकरेजा। ओके जी, मैं आपका नाम को ठीक कर देता हूँ। ओके, फिलहाल यहाँ पे शाहिद जी का मैं गाना प्ले करूँगा, क्योंकि जो यानी विनर बने हुए हैं और उन्होंने गाना भेज भी दिया है, बहुत ही प्यारा गाना।

प्रोग्राम में रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि प्रीति रायदास जी का है। वो सुनना चाहती है ये प्यार कभी कम नहीं करना। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल इन प्यार कभी कम मत करना प्लीज, कोई से तम कर लेना। और यहाँ पे दाता जी देते हैं कि भाई शाही जी का गाना मुझे अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और ये यानी मनहर यानी कुकरेजा जी लिखते हैं जी गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रियंका जी क्या कहती है, किसी देते हैं

0: प्यारा सॉन्ग है।
1: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको। और यानी काजल झका जी लिखते हैं, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद इस गाने के लिए। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये प्रीति रायदास जी का गाना बहुत ही अच्छा लगा है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने प्यारे से गाने में शामिल करने के लिए। ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।

0: कोई सितम कर लेना। सुपर सॉन्ग सर
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, सभी गाने से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये प्यार कभी कम नहीं करना गाना मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगा है। और विजय कुमार लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ छत्तीसगढ़ से। वेलकम करते हैं, अगला जो डिमांड है हमारे अभिषेक तिवारी जी का है, सुनना चाहते हैं कि इस गाने का जवाब, वो गाने का जवाब है यानी प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे फिर आ चुके हैं और यानी प्रीति रायदास जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। जाकिर जी लिखते हैं कि प्यार यानी प्यार कभी कम नहीं करना, बहुत ही प्यारा गाना था, प्रीति रायदास जी को थैंक यू सो मच। और किशन पाल जी लिखते हैं कि बेहतरीन गाने के लिए थैंक यू सो मच। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि एक नंबर च्वाइस है, धन्यवाद मजा आ गया सुनकर। राधा कृष्ण को भी लिखते हैं बहुत ही प्यार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काजल झका जी लिखते हैं गाना ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यानी कि मीना कुमार जी लिखते हैं थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। अगला जो डिमांड है अब्दुल जब्बार जी का सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।
1: मैंने अपनी आंखों से

वेलकम है रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाने बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और मैं मनहर इन कुकरेजा जी लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम पेश करने का अंदाजिया रखो माय गॉड थैंक यू सो मच इस और मीना जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है और काजल झका जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है धन्यवाद और राहुल पाठक जी लिखते हैं कि यानी प्यार से भी ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है प्रकाश जी लिखते हैं कि ऑल टाइम हिट पसंद है और राधा किशोर गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड करें थैंक यू सो मच और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि जितेंद्र सिंह प्यार में नहीं तोड़ना वाला लाजवाब गाना सुनने को मिला मजा आ गया धन्यवाद देते हैं सुनवाने के लिए और जाकिर जी लिखते हैं कि ये तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना बहुत ही प्यारा पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं अच्छा लगा ये गाना। अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की है एक हमारे यानी किशन पाल जी का है और दूसरा सर्वजीत सेठी जी का है दोनों ने एक ही गाना सुनना चाहा है मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया सच में मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया एंजॉय कीजिए इस गाना

वेलकम है रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना रहे हो। काजल झका जी लिखते हैं कि मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मुझे गाना बहुत ही प्यार लगा है। मनीषा जी लिखते हैं कि सुपर से भी ऊपर वाला ये गाना है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मुझे बहुत ही प्यारा गाना लगा, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों को धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों को पसंद रखवाले का लाजवाब लगा। अगला जो डिमांड है वो संजय पटेल जी का है, वो सुनना चाहती हैं बहारों फूल बढ़ता हो मेरा।

0: करके मेरे को रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, फिर वैसे शामिल करता हूँ मैं।
1: मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवा, क्योंकि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। ये गाना बहुत ही प्यारा था।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी, आपका झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद इस गाने के लिए। राधा कृष्ण गोखले जी लिखते हैं बहुत खुश और डिमांड है, थैंक यू सो मच संध्या पटेल जी। अगला जो डिमांड, जैसे मैंने कहा, अशोक देशमुख जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं और सर्वेश भगत जी।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है सपनों का सौदागर और गाने का बोल है तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखे। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
3: अरजय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है सपनों का सौदागर।
0: अच्छा जी।
3: और गाने का बोले तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, और हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत जंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, अंदर प्रकाश, सोनी कुमार, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक

0: हसमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद अनूप जी, संतोष जे, अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे वंशिका जी और आरजे अगंछा जी, आरजे एमएस परमार जी, आरजे आदित्य जी, आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुनर जी, जयराम जी के अमन सर जी,
1: आत्मराम जी।
2: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, अभी अभी कर्मा मूवी का गीत हमने सुना, बहुत ही
1: अच्छा। यहाँ पे है ना यार, गलती प्ले कर दिया।
2: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार जी। मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार पर 90 यानी ओल्ड इज गोल्ड के गाने मैं सुनना चाहता हूँ। तो मूवी है सर सपनों का सौदागर, ये मूवी 68 में रिलीज हुई थी और आर्टिस्ट है सर राज कपूर और हेमा मालिनी, वैसे सिंगर है मुकेश चंद्र माथुर जी और शारदा जी, और गीत के कुछ बोल इस प्रकार के है सर। तुम प्यार से देखे हम प्यार से देखे, तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखे, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तो यह सुरीला गीत होने के कारण सबसे पहले गीत मैं आपको आपकी सुंदरता की मूरत को, वैसे हमारे अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद अनूप जी है, दत्ता कदम जी है, गजानन सालूकर का पूरा ग्रुप है और जितने भी अपने रेडियो हॉटस्टार पर सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को आज का गीत बिल्कुल समर्पित है। तो सुना दो मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
1: ओके जी, तो सुनवा दिए, इन्जॉय कीजिए।

0: तुम प्यार से देखो,
1: हम प्यार से देखो।
2: अच्छा, ये गाना तो आज के इन सॉन्ग मतलब विनर बनने के लायक है, लेकिन मैं विनर बनाऊं तो किसको? इसमें तीन तीन लोग शामिल है, सर्वेस भगत जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं और आत्मा राम जी हैं। किनको सॉन्ग विनर बनाऊं जरा मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और यानी कि प्रमोद जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर्वेस भगत जी, आत्मा राम जी, अशोक देशमुख जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, ये धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।
3: अजय अमन सर जी धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, अपने प्रोग्राम में आप जगह दे दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लेकिन आप सभी को विनय बनाता हूँ, लेकिन गाना किसी एक का ही प्ले होगा। अब आप लोग समझिए कि इनका भाई गाना प्ले करूँ मैं। आत्मराम जी लिखते दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण गोपी जी लिखते हैं तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत शानदार लगी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि बाहरों फूल बरसा और तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, दोनों गीत बहुत लाजवाब लगे हैं, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और काजल जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा था, सभी को थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
4: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
2: ओके जी, और अगला जो डिमांड मुझे दिख रहा है, जो मैं गाना चाहता था वो आ चुका है, नाम है उनका विपाशा खुराना। और इन पहली बार जुड़ी हैं तो भाई वेलकम करते हैं आपका, लेकिन गाना तो मैं जरूर प्ले करूँगा, इन्जॉय कीजिए।

0: ओहो, क्या बात, एक साथ गई हैं और यहाँ पर राहुल पासी जी भी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और कजन झका जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही पसंद है, और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ओके, गाना आप लोगों ने भेज दिया है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, कोशिश करूँगा जल्दी प्ले करने की। और यहाँ पे और क्या कहते हैं, मनीषा जी लिखते हैं कि हाय मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए, और चूंकि इस गाने को जितनी बार भी सुनो उतना ही अच्छा लगता है, बिल्कुल मन नहीं भरता है, जितना भी सुनो बस सुनते रहो, है ना। और राधे कृष्ण को भी लेते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और ये सुन लेते हैं क्या कहते हैं सर्वेश लगा जी।
1: अजय अमन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग को विनर बनाए हैं, और अशोक देशमुख का जी का गाना ही बजेगा, वो आपको गाना भेज देंगे, थैंक यू सर।
0: ओके जी, ठीक है, तो मैं जरूर गाना प्ले करूंगा, और उनका गाना आ भी गया है हमारे पास। मनीषा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, ओके। और रवि मार्ज जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर लाजवाब, दिल खुश हो गया गाना सुनकर, हम तुम्हारे लिए क्या बात है, ओके जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे नंदलाल यादव जी का है, गाजीपुर यूपी से, सुनना चाहते हैं ये वाला गाना, एंजॉय कीजिए।

0: दर्द चूड़ी। गाना ये भी बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं नंदलाल यादव जी को। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि जब तक रहे तन में जिए वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं कि सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और दत्ता जी रहते नंदलाल यादव जी का गाना मुझे अच्छा लगा है। आत्माराम जी।
2: अमन सर जी,
0: जी जी,
2: आज हम विनर हो गए तो हमें बहुत खुशी हुई सर, शुक्रिया। मैं आत्माराम पटेल।
0: ओके जी। और यहाँ पर राधा कृष्ण गोप जी लेते हैं बहुत बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और विष्णु जी लेते हैं कि ओके कोई बात नहीं। अगला जो डिमांड है हमारे इन मनहर, नाम है मनहर इन कुकरेजा जी, गाना प्ले।

बिल्कुल सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। राहुल पासी जी लिखेंगे सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले, गाना अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और काजल जी लिखेंगे ये गाना तो मेरा फेवरेट है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी बिंदिया जी के, और बिंदिया जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना था और राधिका से गोल्फी नीति में बहुत ही लाजवाब डिमांड है। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि शिवम जी, क्या शिवम जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: फिलहाल फीडबैक शामिल करते हैं।
1: अमन जी, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके भी सामने वाली खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा रहता है कि नहीं?
0: अरे हमारे घर के, अब घर के बारे में पूछने के स्टूडियो के बारे में पूछ रहे हैं। स्टूडियो में कैसे सामने तो बिल्कुल यानी कुछ भी नहीं है, यानी कि रोड है कुछ बस और कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे राजेश जी का मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। राजेश

0: लाज तूने रख ली हमारी।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाता है। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आज तो मजा आ गया और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और ओल्ड इज गोल्ड आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे थे। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे यानी कि सोहिल जी का है और सोहिल जी सुनना चाहते हैं ये चांद के पास जो सितारा है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: हमारे ऑफिस में एक मैडम है जो वाकई में एकदम चांद का टुकड़ा लगती है।
1: अच्छा,
0: और दोनों ही सॉन्ग बहुत ही अच्छे थे।
1: ओ, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आपके ऑफिस में भी तो आपके ऑफिस का कोई जन्नत का वो हूर नहीं, आपके ऑफिस का वो लड़का है। ओहो, जी, मुझे याद आया। फिलहाल ये फिर मैं

0: थैंक यू अमन भाई, इतना अच्छा सॉन्ग चलाने के लिए दिल से शुक्रिया।
1: ओके जी, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ आज, यानी कि मनीषा शर्मा जी बनी हुई थी विनर, तो उनके पसंद का जो गाना

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और मेरे पास फीडबैक है यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि फूल बन जाऊंगा और शर्त यह है मगर अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। अमन जी ये गाना मनीषा जी ने दोबारा जी आज वो विनर बनी हुई थी तभी भेजा है उन्होंने और उनका सॉन्ग अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको इस गाने के लिए। राधा कृष्ण गोपी जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं वेरी वेरी थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है जो आज हमारे विनर बने थे तीन दोस्त आत्माराम जी अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी, तो उनका डिमांड वाला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। इसके बाद दत्तक
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।

0: बिल्कुल आऊंगा और काजल से काजल लेते हैं। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: अरजे अमन सर जी, हमारा तीन भाई का विनर का फरमाइश आप चला दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और मनीषा जी लिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी का गाना मुझे अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है हमारे जैसे कि दत्ता करम जी का, मैंने कहा था उनका, मैं प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए मेरे शर्म तेरे सर के गाने से।

और यहाँ पे जाकिर खान जी लिखते हैं कि खुदा से तेरी हम मांग करते हैं, लिखते हैं कि खुदा से हम तेरी मांग करते हैं और तन्हाई में सिर्फ तुझे ही याद करते हैं, तू आए या ना आए वो तेरी मर्जी है, लेकिन हम आज भी तेरा इंतजार करते हैं। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और अच्छा ये लिखते हैं कि गाने का साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है, वो शायद हो सकता है कि शायद कुछ इसमें इस गाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मे भी। अगला जो मैं गाना डिमांड जो है हमारे पास विष्णु जी का, उसको मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए भाई विष्णु जी।

0: एक कुड़िया का हुआ शामिल कर लेता हूँ मैं।
1: मेरे सनम तेरे सर की कसम, मैं तेरी हो गई हूँ, तेरी मेरी प्यारी प्यारी बत्तियों में खो गई हूँ।
0: ओके, अगला जो डिमांड है वो रितु जी का है, और रितु जी की से इन पहले इस गाने को भेजा था यानी प्रीति रायदास जी ने, लेकिन उन्होंने गाना को चेंज कर दिया था। फिलहाल इस गाने को मैं प्ले करता हूँ, एंजॉय कीजिए।

ओके जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लेते हैं कि ये ऋतु जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा, धन्यवाद देते हैं। काजल झका जी लेते हैं मेरा फेवरेट गाना है। अगला जो डिमांड है वो यानी विजय कुमार जी का है, वो सुनना चाहते हैं, दिल के अरमां आंसू में बह गए।

और प्रमोद जी लिखते हैं कि बहुत लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। काजल झका जी लिखते हैं ये तो गाना मेरा फेवरेट में से एक है, थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड है वो अर्पिता जी का है, और अर्पिता जी मेरे गाना प्ले करिए, एंजॉय कीजिए।

मतलब आज का सफर यहीं पे खत्म होता है और जाते जाते एक मेरी पसंद का गाना एंजॉय कीजिए। और तो ये रहा मेरी पसंद आखिरी गीत।

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जग धारिता जन जाने को धारी राम तारी के जम तारी।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं।